आओ बलाई बलाई खाना खातों खा जाने बिशिंग ते फ़ोन को चांग जराओ फाइश शॉक पाई जा खा खलायो न रोग बहाय न खातों खा जा खलाई न नाशिंग ए डंग वाई खाना दिनी ने पांडा न खराना ने बागे ताई पांडा रोगो बा शावो फाइनो शावो पांडा बा जालो फाइनो होने ने नाशिंग ए न डंग वाई खाना ने खा खलायो आओ न रोग ने खातों माने नाशिक माने ओजराओ न पाइका फारिका चिंग ताबुक पांडा चांगलाई माने बखा थांगलाई सेने फ़ोन को चांग जराओ जोंनो सालब्रुम ब्रुम गाहाम गोरों दनाय जोंनो नाय दंनाय जोंनो हामारि दंनाय संसाराव जोंनो हायमा जायनाय कादिरि दनाय जों जतन जानाय जा खुलुमानि मोदाय इसर गदन फारि जों अजराव खुलुमुया फारलायनो फुंखो जां जराव तांसा लब मुं रोजाब मुं खानालाय माने बिसिंथै फारि अजराव लब मुं रोजाब मुं खानालायनो ताय खुलुमुया फारलायनो

हादर खिग्लै मांगला खिबि मानग्ला बिनि खिबिजाखनाय थाय दङ नांखे नों किसा हिमि थाङै फानो मा खिबिनाय आबहाय साफसुदारा तनानिखे जों आबान जों नक नुखुंरगबो अमाहाय न जिन खिबिजाखनाय थायानो जों मा खिबिव नांखे पाब्लिक एरियाव पाब्लिक प्लेसाव बाहाय न जों अबहाय केन मा ख्लाय थाय अब गोबां मानो आयेन रगबो पासंजाखनो दङ हायफानो जिनि बर' रगंखा आयेन न जिनि यासिमा बुरा फुनुखनाय अबहाय बर' रगनि हिनजागौ जिनि इन्डियानि बर' रगंखा गोबां गुक न आबनि बागै हजाग दा बुंनो सिमिनो ओंनानै नांगौ साफ सुथ्रा नों हजागोनखाखाय निनि आमचाय निनि एरिया बेबाखनो साफ सुथ्रा दङाय नों ख्लायगानखे ताय नि ननर निनि सेसाराय रगबो ननर सोरोङै अबताय सालायनासो नांलै आबहाय अब रायदा रोगजाङै थानाय आबनि बागै दा बुंनि जों बर' रग दा बुंनो सिमिनो सोलोंथाय अबहाय सामुजों ख्लायै थांबाय नायनाय नाहानाय गग दग साबो दं हेलो हेलो फुंकाहाम ताको फुंकाहाम निनि खरां काहाम दा ततरा रग दा म दा गाखन लामसगो सादि द जरा बेसे गोरिखा

आओ हाई हाई जिन्हें साल का मान बान्धव किफिली फैक्या जिन दिन साल जमुन पब्लिक एरिया रखनो क्लीन खेतने साफ सुथरा खेतना कक रखनो आओ जिन बल्ला अवेरनेस मानी नंगो जे चीनी थाई आफानो चीनी टंग थाई आफानो जिन आ थाई रखो जिन साफ सुथरा तनानी अब वन सकूं चीनी जेफ्रुफानो टंगनानी नांगनाय ताई गुबुन बर' रगनो बहायनो जों खातंग्रोनानै नांनाय ते जों मुखाबा जाजागनानै नांनाय ते हजाग होननानै नांनाय जेसे जागा थांबो जों साफ सुथ्रानो दैनाय जेफ्रुफानो हजाग होननानै नांगौ कर्नो दैनो सालाय दं माने दिनै साल खामानि बान्दाव फारिगे अजराबो ककदुगिया जागैनायानो साबो दं तामु सानानै मुजुं जागै ककदु बायग्रोङै दंखा हायगाबा हल्डारि रुनो आबो साइ मानलिया हेल' बेलाखे फुं गाहामबाय ए आं बिरिन दंसि मैयासा गेदेखाबा नां माने बरकदां न तामुं न होनैनाय सागरा दिबाय

नरक बहायनो सैबायखना हनायां खाख्लायो ताय नरकनि ककतां कक्लब रक खानान बागै बेलाय खातुंजाक आव तामनि हनके सों कामिनो कारै सों कामिनो कारै सिनि तंसुंगो थांसुंगो सों या कागै सों सामुं ख्लायमानिया यासिकपन हंदे खापंगनि मारकिसिं कामि बाय सिनि आ लांगमा गदालजाक कामिनि हादुलै कामिनि नबारतिबार कामिनी बुफांग वाफांग सोंनो रिंहरो सों जेसेक पानो हंदी कामि बाय सों चालै थांदि फियाबा बायथाक जरा फन सों कामियो माथांगो खाबुं मारगिसिं सों कामि नक होक याखरै सिनि सामुं हुमगो सों थांलायो टाउनो दलियो सिटी कतर कतर सों थाङै टङैलायो सा काम ग्रं टंफ्रो बेलाय यागरां टंफ्रो फियाबा खाबुं मारगिसिं जेफ्रोनिनि सा खामि फनंखा बेलखा आव आफ्रो निन गानाव बासनान बागै नों कामिनि ओ सरल हनेनो खा काहाम तंकसं कामिनि बरकनो नों मुइतु मानो मन बागैन कामिनि आनि कामिनो तै खाफने मारखिसिं नरक ककतां कक्लब सैबैखेना ताइ नरक ताबुक बाहायन सैकं रमजे खंखा दाक्ति दाक्ति नरक सैकं रमदि आनि कामिनो तै नै साग सागनि कामिनो तैटा दो साग सागनि कामिनो तै कामिनो तुयै नों बाहायख्लायै नों लबै सैनानि मुसं नों सैमानो खाबनि मारगिसिं हायदिबाना हाके कामिनि नबार कामिनि सातं फुङासिरि सिरि कामिनि नबार सातं बोसोगसे तंथक कामिनि आहादुलै तैमा तैसाव तगुखांगे तैरुमुअन तगुखांगे बोसोगसे तंथकै तं थक थुगिया कामिअ सालायै तंलायजाव वाकमासार आथारखांगे মই তুনলাই চালাই যাও কাহাম হামিয়া জরাও বুসকাঙ্গ বাসাওই ফেলাই যাও টঙ্ক সংরক কেরং তামুংন আসক রক সিলাই যাইয়া অমহাইকেন টঙি ফেলাইকা খাপনে মার কিসিং ইয়াফরাং টংথং ক্রৈথং কিসে মিশা মই তুনলাই বাকলাই চালাইও হুগো থাংলাইও সামুং হুমুং টাংলাইও অমহাইকেন টংলাইও কামিনী বররকলে হায়দানা আও হেকে খাপনে মার কিসিং সিন পান্দানি ইয়াফাঙ্গন फायदि सों रसामुं तां साखनाय नालायग्रा सिवान आबुनि उल' हंखे खाबुंनि मारखिजिं नरनि खुगदै आं आव सों खोनालायसिनाय नर गोरों हरदि 0381 232 6253 कगदुग नाम्बारनि बिसिंदै

0: हासुक बेसरनि कामियो सोंले तंजाव जत्तनो बायाबसारि कथा लायै रांसाक हा आनियो कामि नुनां बाहायखे पगै मानाय नोंबाय जेसुक हाकसाल थांनो नायब आनि खाले सालै थाङि मानिया तामनि हनखे आव कामिनि बुफां वाफां तक्सा तलवा पुमना खरां रग्न आनु आनि खानो सतन हरो नायनो खाबांनि मारकिसिं ककदगो साबतंफि हेलो
1: फुंखाहाम आं कसि दाराथ' यां आं केनिखाय केनि त' पारानिफ्राय सालाय माबा त्यानि बुंबो साजिनाय त्यानि पाराबो साजिनाय दाराथ' ए आंनि बुंबुरक त' बाखो सेमियारावबो दं ना आंनि आसल पारानिखे यां चुराय बारि वाटिसे पारानि दानियेल देबर मासि त' दानियेल से माने देबर माता ओमफ्राय यां रेबती महन खिनि थाखाय बैसिन आरो गानो आंकेल नुबोथ' मुंखे आंकेल जा आंकेल नोंखा बहानि नुमानिसि त' आसल बुं मुंखे दानियेल देबर मासि के पारानिखे गाबोनि बागै बाक्सा बुजिया हसानि लामा खाइसि गाय मिया त' बिसाकर्म दिन गां इसिगाङाव फैमानि दा

आव खबरनि मारकिजिं हायनो हायै नरकनो लामसंगो नरकनि हामजाकमा चिनि खातंमा पान्दाव आव नरकनि हामजाकमा चिनि खातंमा पान्दाव नरक नरकनि खनातक जाकमानि रसामुंगनो खनाय मानबायनाय दाय नरकनि खनातक जाकमानि नरक खनानायनि बागै आं माइक गोरोंहरदि 03-81-232-62 अकदुक नाम्बारनि बिसिंथै खाफंनि मारकिजिं नायन दीपर जराव सातुं तुंहैदों फानो हरसामुं खानारै नरंनि खानक गोजां रुइदों मान्न'

0: आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।
1: आओ नाइन एन है के हो जरो कोक दुगो सबतों। हेलो हेलो आओ सागरदी सबों का दीपोर का हम
2: पायवार के निकीजो सारी
1: तो ओ दो सादी सादी
2: आंग रिसम कैसे करना है। तुम से आशा कौन है और जानी रिसम हो दे
1: तुम से अच्छा कौन
2: है फूल सब नाम तुम से अच्छा कौन है और रिसम लोग करे
1: ओ
2: जो तो खाना है किने ताको रविंद्र ताई कबूजला निंदा जिस रहता है बाइक को निकाल ताई वेरिडेस में ताई बाइक का खा का हाँ ताई बाय अंजोली यंग बिसर गंजोनी ये ताई यंग को नाना सायती ताई गुराखानी कास्टिंग ताई जोर फ्लाइट उन्हें भाग गई
1: बोर्सांग

0: हाउ खपनी मार्केसिंग नरक खानाय तंग सारसा पॉइंट डॉग मेगा हार्जो एफएम उजयंतो नरकनि हमजाकमा चिनी खातोंमा आउ नरक गो नरकनि खानातक जाकमानि रसामुं र खानानन बागैनि गोरों हरदां बाय 03-81-232-6253 कखदु नाम्बारनि बिसिंते 99 हाके कखदु गो साबतों हेलो
1: हेलो दारानो बेला किनोति बरकाहाम
0: आउ दीपरकाहाम
1: आं नोंनि ताखुक क्वार चलानि बिरिखास
0: बेलाय हामबाय
1: आनो रसामुं खनारदि तेरे नाम
0: तेरे नाम
1: तुमसि माति करना ओदनारन दर सबजा आं ओबनो यापना मुचुंगो उल्ला दुग्रानि आनि आमा

0: हेलो,
1: हेलो
0: हाउ सागरा दी लमसुगो सावतों
1: दीपर कहाँ सर
0: दीपोर कहाम
1: लंबू चलन बिसरे शहर का
0: छादी बिसराई बोर समों खनाने बागे नंग करंग होर का
1: दिल की बाजी तो कि नहीं मुंडो
0: दिल की बाजी।
1: और नहीं रहता मुंगो कहीं गंग के अग्रेसे आया हो या निकल
0: दिल की बाजी ना हिंके कॉक था हिंके।
1: अग्रे से आए हो या नहीं रुका का तब जब तो चीनी या खरे वो तो जब तो खुनाई चंगले रंगी बगे मुरुम काई तो खाली या जब तो खुनाई चंगले बगे इन चीज़
0: आओ आगरे से आये हुईया दिल की बाजी अमित कुमार नहीं खरंगो दा खाना दिया क्या नहीं खाना तो जंगमनीर सामूह।

0: हेलो,
1: हेलो
0: आओ दीपोर काम तैलम सुगो।
1: ए दे और खानदार रा ए आया कि न थन को से ले नि करा
0: शादी
1: हेलो
0: शादी शादी दे नहीं शादी
1: ए आंटी दी को पूरा कर खबे
0: शादी
1: नहीं ओ को मैंने रंग सा कर से बकम भैया करेंगे मकान के खाने डक ब्रो
0: बोबो बोर
1: हम
0: सामुंग साबोर सब मानी
1: खाए रंग सुरक मैं खराब करा
0: साबोर सब खा शादी
1: और सा कर से बकम तो यह नहीं खा सुरेंगे ही मैं डर सामुंग
0: ओके नंग आबा हाय कसर माजर साखा बाकिंग लाइनै
1: ओ वाशे पुरो मो काम कर दस और सामुंग
0: आको तो सामुंग तो कबा मा ना साबर साब बोनो सेमिया हंके
1: अमुक है शुरू कर बहु माया धोता है कौन माया है क्या खींच देखना रही था
0: रंगसाग रिसाग ना
1: रास्ता रिचा बाकुम तो यही नहीं बता
0: साबर साब सेमलिया ना
1: अमुक है शुरू कर बहु मंकी चा पंपीस में तो खदरा
0: साबर साब खा नंग सेमलिया ना नंग आसे खमा थे
1: मोले
0: ना
1: दीदी
0: था
1: से ना हिंगा है मो
0: हाँ
1: मोले दीदी से रिचा मुखना
0: नंग आसे उसा मुखा थे ना था है
1: खना
0: दे
1: वो खना पन अच्छी चा तो मैं धोता और कौन सी दिन आता है
0: हाँ जी
1: तो
0: ना
1: मामा यहाँ का लेकिन निर्दय मुख से चकना दे दरा
0: आगे रोको नंग खलक खाना करना जीनी
1: और समु तांग आंग दिल दिल में चुना वो पराजित चुना और समु तो
0: है पनो
1: गाय
0: नेगरी मौत आंख नेगरी

0: बुंबाय साबरसाब मानि
1: ए रायना सायना सालांसि बे खिनि गथमा न हनै
0: सिखांदार साब
1: ए सिखां रुमि बाय सिखां
0: सिखां बाय साबो
1: रुमि मुरासिं
0: रुमि मुरासिं ए रसामुनि ककथाय हिंके
1: रायना सायना खिनि गथमा न सालांसि बे नै
0: रायमा सायमा रायमा सायमा ककबरक ना और सामना रामा सैमा को गुरक सॉन्ग

नाय गेलना अरसा मुंखना नाना बागै पावखारका अर्जुन ठाकुरनि सिनि ताखोखरा मिलन नायगिरनाय बिनि अरसामुं तड़तं बो अरसामुन खोनानान बागै कल खरका आव नायनि गेनाखो रायमा सायमा आव दाको हेके मदांखा नायनि नेगेर सिवानो रायमा सायमा अफिसियेल कब्रक आव खापने मार्केसिं नरक बो नरक नि खाना थक जाग माने सामुं खाना नि बागै नाय नरक बो कक दुख ते करन हर दि 0381232625 कक दुख नाम माने बिसिं ते नाय नाय नरक नि खाना थक जाग माने सामुं र नरक नक खाना रै नरन खानो तं थक रै स्रां रै जा मानो नायना

आओ खपने मार्की सिंह नर खनाई तंगो सरसा पॉइंट डॉग मेगा हर्जो एफएम उच्चोइन तो आओ है के नर ने हम जग मार चिनी खातुंग मा पांडावो नर ने खाना तो जग मने इरसा मुंगरो कबांग मानो खाना रखा है के खपने मार्की सिंह जोरा खाजग ने बागे नहीं सिंग औरो ताईबो खाना नानी मुसुंगबो सिंग खनाई मालिया सिंग तबुक ताई कैसे सिनी पांडा बेरे मुथांगी तंगो तबुक ने सिनी पांडा ताकैसे बेटांग ओमोंका सरंगदी ताई सिदी ओ पांडाओ बो नरग्नो लामसुगो

फापांगने मारेखिसिं आव अजराव जों गिच्छा मुजु खायलायवन हाके सरंगदि ताय सिदिओ नरनो लामसुगो सरंगदि सिदि आव सों सिनानि नांगो सों सिगांके सों बुइनोबो सों सायमानरि मानो अमंखा आव UPI हायाखे मोबाइल नो सामगो फनांगै मानै खनै पाइफ्रो रांग्रुइ तंलायमानि UPI ने फुल फॉर्म हनके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हाके ओजराव सों यांग उयांग थांके माल खुंगो हायखाबा मैखथों थायखथों पाइलायफुरु रगो बेबाग जरावनो UPI नि बिसिंतै सों मानै खनै पाइलाय तंलायो पेट्रोल पाम्प रगो रेल स्टेशन रगो गबांग जरावनो सों टिकेट तानफुरु रगो सामगो फनांगै सों तंलायो फियाबा ताइसिन याफाव रां तैजग याफानो मोबाइल तंखे आसे वानानाबो नांथाया ताइ बोक्रायनो तैयै हायखाबा बांति हिनै सालायो आबनो तैबा आसोग जोंजाल करिखे सों तंलायमानि फियाबा भारत हापां तै नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन अफ इंडिया ओ नैसाय नैसि दग बिसिनि सेप्टेम्बर तालो कायसा प्रेस रिलीज खालायै साख्लायखा UPI ते QR कोड नि बिसिंतै ट्रांजेक्शन खालायथानि रायदा कोताल बक्सिन जाक्सिनाय होनै आर रायदा कोताल बोसखां अक्टोबर तालनि सालचिबा नैसाय नैसि दग सालमारिनि सिमि सामंगो फोनांजाक्सिनाय हाके खाबुनि मारिखिसिं नरक UPI हेकबा नरक स्राय स्राय के सानान थांगांके मोबाइल नि बिसिंतै रां रलायै रां यासाग लायै तंलायमानि आबुनो तै नरक जतन किसा सिनानि नांगो अ रायदा कोताल ताम तामो खाय जाखा आ रायदा कोताल तामो जों जतन स्राय स्राय के सायमानना नांगो बोसखां अक्टोबर तालनि साल चिबा सालमारिनि सिमि UPI नि बिसिंतै रां खक नै साय रथानियो

हाउ खबर मारे कि सिंह हाइके फैलियोजरो एफ एम कबुरक न्यूज हेडलाइंस नाइन एलिगार छिवान मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी तीन विडिओ कन्फारेंस सेफ बाय फिल नीची रोजगार बाणी को कताल सेबुक मानना खरक बासीसा सैनी गुबां सिख्ला रग्न अफार लेटर याफार्मा पांडानो चेंगी रेखा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी तीन दिल्ली कतालो द फ्यूचर अफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट डायनामिक्स कुसुक बेरेमनी कुथुम लाइमा मुंगन चेंगी रेखा अ कुथुम लाइमाओ तंखर तई नबार तैबार गदालजाग जुदा जुदा नांगुक मानो तैयै कगलाम सालाइजागै दङ भारतनि मन्त्रि बख्रक नरेंद्र मोदी तई कथाजाग आरब आमिर शाहीनि राष्ट्र बख्रक शेख मोहम्मद बिन जायेद आल नाहियान कगलाम सालाइमाओ आमजाइनि तंकचां नायमुथां तई हामख्रायो सबासु तई कथा मुं बांग्रनानि साखा फान बक्सिन लाख्या भारत नेपालनि बागै ताइबो सिसा टन चुबाचुनि मानै रहरखा हदलामो भारतनि बुइहा मन्त्री डक्टर एस जयशंकर साखा भारत नेपालनो नांगमा चुबाचु रहरै टंगो फिल नैसि एसियान गेम्स दिनैनि सिमि सेंजागानो खरक ब्रैरा चुकुचिदक भारतनि एथलीट काई थामचिदक जुदा जुदा इभेन्ट मानजागानो हाके खापुने मारे किसिं तापसु जरनी कॉकब्रोक न्यूज हेडलाइंस खाना बाख्या आओ हाके खापुने मारे किसिं आओ नरक बाई रसामुंग रोग खाना लाइते जरा त्रक त्रक खाईनाय थांगिनु तंगो हाके आओ तिनिनि साल नरक निबागै तंथक बायनु कुप्लुंथों नरक नरक रसामुंग रोग खानारना मुसुङैबो जरा आनु नरक बाई तनान रलिया बन बागै अर नमा कुतुल छिनाय खापन मारे किसिं हाके नरनि किसिं कुंज अर नमा बासाखा रखा जतनन हम बाई।

0: मैं जलकर राख हो जाऊंगा, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं तुमसे भी अच्छा खाना बनाऊंगा।
1: चलो उठो,
0: मत खिलाओ,

0: All new safety features.
1: We love our eco cause we can bring all our friends.
2: We love our eco
0: cause it's made every journey special.
3: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to ₹40,500. TNC apply.
4: সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অটল পেনশন যোজনা মোদিজির সংকল্প।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: এখনো পর্যন্ত

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना, और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग 2.5 दशक कहें, 3 दशक कहें, 3 दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं, वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद मनोज जी।
1: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
3: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित ना रहे जो पहले से ही मुख्यधारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम

0: कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुँच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुँचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
2: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
1: जी।
2: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है, वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं, और अलग अलग योजनाओं के तहत
1: जी।
2: और जिस विशेष बात रखिए जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें हैं, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं, और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
1: जी।
2: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहाँ की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
1: जी
2: उसको कर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
1: शुभ, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए, और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का

0: जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है, उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई, तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
1: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है
0: जी
1: वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो
0: जी
1: शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला। इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करके कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए, आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारे स्कीम में ये जो मॉनिटर आया है ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं रहा। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया और नए योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है ये
0: जी।
1: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चेंज है, तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया। सिंपल योजना है
0: जी।
1: लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए।
0: जी बहुत अच्छी बात की शुभमय कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर केवी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगे, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ, इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
2: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे,
0: जी जी,
2: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा
0: जी,
2: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की, जनधन हुआ चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन आधार मोबाइल, तीनों को जोड़ के आपने तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे, अगर आप कभी भी देखें जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के,
0: जी,
2: जो आम नागरिक हैं, और सबको उनको एनकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है
0: जी, जी।
2: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं इसका एक और फायदा है। अब उसके बाद अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें UPI QR कोड का जो इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए
0: जी।
2: शुरुआत में

0: कबल काफी आलोचना भी आपको याद होगा,
1: अच्छी
0: आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता
1: जी।
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास एक QR कोड है
1: जी।
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से शुभ जो कि आर्थिक विशेष ज्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में UPI को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है अब
1: जी।
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं होता था
1: जी।
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ, मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, DBT किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को? यानी काला धन सफेद धन, धन धन है, लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें DBT कैसे कहले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ? और एक बड़ी अच्छी बात के भी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं, किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
2: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखें CAG का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है। हर साल का CAG का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं
1: जी,
2: बड़ा नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया है या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसके हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा 7 ट्रिलियन हो जाएगा और जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपए इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए
1: जी,
2: उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जिसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी
1: जी,
2: ये जनधन मुद्रा वाली योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में हर 15 दिन में जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी,
2: उस तरह से वो पे। तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर जो एक बार ही सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी इस पर भरोसा आ गया है, और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है जी।
1: यहाँ पर के भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, शुभ में कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, बेशक आमदनी के आंकड़ों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गाँव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
0: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण

0: बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज़ बदली है। फिर भी 40% के आसपास मान के चलिए, 45% के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती कल्याण, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से। जो शुभ भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
1: जी,
0: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखें स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरे परिवार को सोचती है, ये नहीं कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर एक समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह के कल्याणकारी योजनाएं। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है इस सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच।
1: जी,
0: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है, तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कि लक्ष्य आधा है सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारे जैसे बात हो रही थी, कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करें। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा है कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाएं, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है। ठीक है, कास्ट का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा वो, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिला के दबाव सब पे है।
1: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गांव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गाँव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहाँ तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्था करना वो मुश्किल था, क्योंकि ये एकदम काफ़ी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वह आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाएं।
1: जी,
2: इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
1: जी
2: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए।
1: जी,
2: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है। जी
1: श्रोताओं, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं, बुनियादी परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहाँ जाना कठिन था अब वहाँ सहजता से आप पहुंच सकते हैं और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर, लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई

0: विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
1: अगर स्वस्थ होगा राष्ट्र तो वो विकास के और कार्यक्रम में उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की जो पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है।
0: जी जी जी।
1: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 70 के ऊपर, 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी

0: तो उनमें दो तीन कार्यक्रम लाए गए, उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा आभा स्कीम है आपका, आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब सम्मिलित करके कर रहे हैं। और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप सरकार को कोई खर्च नहीं हो, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप, और उनके जो उनके अस्पताल है वहाँ जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है
1: जी।
0: और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए, कई सारे टाउन टीयर टू सिटीज में हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल एक जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं
1: जी,
0: कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ हैं। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है, आप अस्पताल पहुंच गया पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
1: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं, और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें, और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
2: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, जितना जितना जिस तरीके का हम अगर हम हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं, जैसे पीएम आयुष्मान भारत
1: जी।
2: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब यह है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगहों में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं मुस्लिम की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हमें ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक जैसे कहते हैं एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है, तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूँगा जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन चीज इन इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में
1: जी जी,
2: कि का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफ इसका के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है। यही है स्कीम्स के जिसे कहते हैं हम सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्यक्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स के सबसे बड़ा खूबी कि गवर्नमेंट के जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारे स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपना अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया है। और ये सब बहुत बड़ी जिसे मैं कहूंगा फेस चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड
1: जी। यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहाँ उस दिशा में

0: जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
1: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए चुनौती है, चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाए
0: जी,
1: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है। एक लक्ष्य साधा है 2047 तक, जो 100 साल भारत का आज़ादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होते हैं, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी, ये तो शुरुआत से जैसे रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा, पुरानी बात है। लेकिन उसके आगे और कई सारी चीज़ें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर, वो सामाजिक सोच। और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीज़ें हैं। तो वो विकास, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे हैं, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जैसे है कि लास्ट में, जैसे अगर कहें, अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं, लेकिन
0: जी,
1: अंत में जाके सब उस टेप को तो चाहते हैं, या तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम, चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है उसके लिए जो है, जो सोच बदलने की बात आई थी, जिसके बाद शुभ कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, वो पहले है।
0: जी जी, जी
1: सिर्फ
0: जी,
1: सोच ही बदलाव
0: है। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो
0: बिल्कुल,
1: ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो जैसे कहते चुनौतियाँ हैं, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है। जैसे मैंने कहा अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए, तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचे।
0: बिल्कुल शुभ। प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है। तेल के दाम बढ़े लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई, हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ्स का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया, क्योंकि हम बड़ी विविधता से, चतुराई पूर्वक, समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं? आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इंप्लीमेंट हों और वो साल दर साल इंप्लीमेंट होते रहें, उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
1: मनोज जी, आपने जो बात कही है बहुत अहम भी है, और इस पे देखिए, जैसे इससे पहले वाकई बात कही, सोच बदलने की बात है, और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते हैं, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं, लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, तीन चार चीज़ें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, और वो घर किस नाम पर जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी घर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते, तो एक ही सोच बदली कि वे कार्य करें।
0: श्रोताओं, एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्णता में बदला है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर, एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद मनोज जी।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक

निदेशक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉन

0: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने

0: तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
1: I think close to 8 cargo planes have arrived.
2: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिए।
1: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया। और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
2: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential.

0: potential and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
1: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
1: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
2: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी, मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57

0: रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता। लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ चेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनचैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
1: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर मलेशिया इज ऑल्सो देयर साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स उसका स्तर अलग है यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बहुत मजबूत टीम है हमारी बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा जापान और साउथ कोरिया इवन पाकिस्तान इंडिया तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट ऑल्सो तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है नो डाउट अबाउट। मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
0: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है तो

0: वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्था मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशु भी शामिल है, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे, वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: এতক্ষণ আপনারা শুনলেন 20তম এশিয়ান গেমসের বিভিন্ন তথ্য, দিল্লি কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠানটি। এবারে আমরা ফিরব আমাদের FM উজ্জয়ন্তের সেই অনুষ্ঠান।